0: पड़े कते बा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे

जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पहलिया लै धूर मुखलावा गुरसिखा की कहाल थाए पई जिन हर नाम ते हवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज।

0: थरिया सब कोए, सूत क्यों कर रखी है सूत पवे रसोए, नानक सूत के मत रहे तारे तो मला पहला।
1: मन का सूत को लोभ है जेवा सूत कूड़, अखी सूत को वेखना पर त्रया पर रूप, कन्नी सूत कन पहलाए तुम्हारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जम कुर जाहे महला पहला।
0: सब सूत को परम है दूजा।

0: उतरै नाहीं मैं। जिन पट अंदर बाहर गुदड़, हे पहले संसार, तिनने हो लगा रब से ती देखने विचार।
1: रंग हसे रंग रोवे, चुप भी कर जाहे परवाह नाही, किसे केरी बात सचे ना। दरवाट ऊपर खर्च मंगा जबे ते दे ता खाए, दीवाने को कलम एका हमा कुआ में दर ले लेका, पीड़ छुपे नान का ज्यों तेल।

जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई। ऐसा धन दिया सुखदाता, निखुट ना कभी जाई। आनंद पाया सुख सहज समाने, सतगुर मेल मिलाई। मन नाम जप नाम आराधा, आनंदन नाम बखानी। उपदेश सुन साध संतन का, सब चूकी कान जमानी। जिनको

कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्व जिया दयाला, सब किश कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला, राख ले नानक जन तुमरा, जो पिता पूत किरपाला, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्व जिया दयाला, सब किश कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला, राख ले नानक जन तुमरा।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा कर पहला ते तुके एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। किस हो जाची किस आराधी जा सब को कीता होसी। जो जो दीसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी। निरपौ निरंकार भव खंडन सब।

देवन के देव महादेव के देवनाथ भूम के पुजैया मोहैया महाबाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के काल है कुचाल के काल है।

करता करीम सोई राज की रही मोई दूसरो न पेद कोई पूर प्रम मान वो एक ही की सेव साबी ही दो बुर्दे एक एक ही सरू सब एक है जोत जान पूर मी न पार पाव हिंगला हमाल त्यावे गोर गर देजी गुन गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना कि तेक पादे आर्ब

अतर के चलिए शत शत्र के तरह यशत्र धारी पिछलिया मां सतन के साल है दान के दवैया मां मान के बढ़ैया अवसान के दवैया कटैया जम जुद के तितैया विरोध के मिटैया मां बुद्ध के दवैया मां मानु के माने ज्ञान के गत मां बुद्ध तक गत देव कालु के काल मां कालु के काल देव कालु के काल मां कालु के काल देव कालु के काल मां कालु के काल तेज हुक पर है के रासिक सर है के सुध तक पर है के सिद्ध तक सार कामना की खान के साधना की सान विकर्तता की बाण के बुद्ध को उदार सुंदर स्वरूप है के भूपन प्रभु कह के रूप हुक रूप है को मत को परार है दिनन को दाता है गनीमन को गार के साधन को रस के गुणन को पहार गुणन को पहार गुणन को पहार अंजन बिना निरंजन पर भी नक सेव के अधीन नक दिए जम जा के देवन के देव महादेव हुक देवनाथ उनके पुजय महाबल कामना पुकार है के बुद्ध तक वरे

0: गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

0: आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दासन दास तुदया के बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु बाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दया खेलै सगल जगत।

सर्व ठार मोह हो सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी। सर्व ठार मोह हो सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया

राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक न जन्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा।

सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरे तारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा।

मेल लहु दयाल तह पै द्वारिया रख ले बहु दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत बछल तेरा बिरद हर पतते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिनो मोहे सारिया कारु गहले हो दयाल सागर संसारिया लिखे कतहि न छूटिए खिनो खिन भूलन हार बखसन हार बखसले नानक पार उतार सुकहु टल गुर सेविया एहनिस सहज सो भय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय ओ वै सिफत खसाम दी नूर अर सह कुर सह जटिया

अपने साहिब का परवासा गोर पूरा पेट्यो वड पागी मनहे भया पर गासा कोई ना पहुँचन हारा दूजा।

कंठ लगाए आपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा वड़ी वड़ियाई अचरज शोभा, कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेट्यो, सगले दुख विनाशे वड़ी वड़ियाई अचरज शोभा, कारज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेट्यो, सगले दुख विनाशे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब किस जानला, सब किस तेरे वास तेरा घर भला, तेरे घर आनंद।

षाड विखय विखखाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविए एहन ससहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम।

0: मिल हर जिस गायो, कोट जन्म के दुगवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। सलो
1: पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दाई दया खेले सगल जगत, चगियाईया बुरियाईया वाचे तर महदो, करमी आपो अपनी

नित हृदय रखा समार। दंडौत बंदन अनुकबार सर्व कला समर्थ, डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाट बिकै बिकता। माया मोह परम पै भूलै, सुतदा रास्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलन जम त्रास मिटा। एक अरदास।

बंदना फिर जूनी पाए हो मैं कितों उपजै कित संजय में हो जाए हो मैं कितों उपजै कित संजय में हो जाए हो मैं ए हुक्म मैं पया कृत फिराए हो मैं दीर्घ रोग दारू पीस माए।

0: प्रिय चिंता की चिंता भी करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान अभग नानक सच्चे नाव क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख नेकियां चंगियां।

शब्द रस पाया, नाम निरंजन उर धरिया, हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे, कवि कल ठकुर हर दास तने, गुरु रामदास।

संतोख सरोवर बसे, अमै रस रसन प्रकाश, मिलत शांति उपजे, दुर्त दुरंतर नाश, सुख सागर पायो दिंत, हर मगना हुटे, संयम सत संतोख, सील सनाहो मफुटे, सतगुर प्रमाण बिद नै सिरयो, जग जस तूर बजायो, गुरु रामदास कल उच्चरे, तैं अपहै अमर पद पायो, जग जितों सतगुर प्रमाण, मन एक त्यायो, तन तन सतगुर अमरदास, जिन नाम दृढ़ायो, नवनित नाम निधान, रिद्ध सिद्ध ता की दासी, सहज सरोवर मिलियो, पुरख भेट्यो अविनाशी, आदले भगत।

0: प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली ना हुट सतगुर शब्द यथा अमित तारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सह समायो अयुनि संभवयो जगत गुर बचन तरायो अवगत अगोचर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरे तैं जगत उदारन पायो अवगत अगोचर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचरे तैं जगत उदारन पायो
1: जगत उदारन नव निदान भगते पव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारन सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बट भागे ते मुक्ते पे सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे तै शब्द निशान बुझायो सेज सदा सह शावान संतोख सराय चौ सदा शीर्ष नहो सोहै गुर शब्द समाचरयो नाम टेक संगात बोहै अजोनियो पाला माल सतगुरु संग निवा

जिनको गुरसो परसन शब्द लग भव जल तार परचो परमान गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल का।

आशा अंदर सब को कोई निराशा होए नानक जो मर जीवया सहलाया सोए आशा अंदर सा